रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मजेदार शो हुआ सर। मैं हूँ आपका साथी और सर दोस्त हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप भी बने रहें। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्सपर्ट। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते हैं आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चनार।

0: Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर।
1: रेडियो चना वेदर अपडेट।
2: जी हाँ, आज का मौसम कैसा होने वाला है हम बताने वाले हैं आपको, क्योंकि रेडियो चुनार पर वेदर अपडेट जो होता है एक्यूरेट से भी ज्यादा होता है एक्यूरेट।
1: रेडियो चुनार
2: वेदर अपडेट। जैसे वेदरमैन का कहना है आज के आज दोपहर के बाद से फिर से जो है सेम रूटीन जो है फॉलो किया जाना है। इट्स गोइंग टू बी स्टॉर्मी आफ्टरनून, बट अभी की बात करें तो इट इज क्वाइट सनी आउटसाइड और धीरे धीरे जो है बादल सूरज को ढकने की कोशिश करेंगे। दोपहर होते होते देयर आर चांसेस कि बादल बरसेंगे, देयर कैन बी स्टॉर्म्स एज वेल, तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इट वॉज क्वाइट पेनफुल टू नो अबाउट द जर्नलिस्ट फ्रॉम टंगमर्ग जिनको इंजरी हुई पेड़ गिरने की वजह से। सबसे इल्तिजा है कि उनके लिए दुआ करे, सबके लिए दुआ करे, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में लोग हैं उनकी शिफा के लिए दुआ करे और रब उनकी जिंदगी में बेहतर दिन जो है ऐड करे। और साथ ही साथ ये जो हमारे जर्नलिस्ट

0: भाई है जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उसी टाइम एक पेड़ जाकर उन पर गिर पड़ा. इट वॉज सो पेनफुल एंड सोशल मीडिया पर एवरीबडी वॉज सेइंग कि ये जो जॉब है बड़ा ही रिस्की है एंड जर्नलिस्ट जज्बाती लोग होते हैं और मेहनत कश लोग होते हैं. हम बहुत ही मेहनत से अपना काम करते हैं और ऐसे बुरे वक्त में हम लोगों को चाहिए कि उनकी सराहना करें और अगर हो सके तो मदद भी. Salute to these brave journalists, Radio Chinar 90.4 FM, Team Radio Chinar, and हम ऐसे लोगों की जो है प्रशंसा करते हैं. God bless them and God bless this guy जो कि कल इंजर हुए हैं and get well soon brother.
1: Radio Chinar weather update.
0: जी हाँ, अभी की बात करें तो UV index moderate पर है, humidity 57%, wind speed 5 kilometers और visibility 16 kilometers. आज का sunrise हुआ 5:30 पर, आज का sunset होगा 7:27 पर. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM. मैं हूं जॉक्स, इसी से सिरे हक धड़काते रहो.

0: जूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे।
2: व्हाट्सएप पे
3: दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जो वायरल होता है बंद आ ही जाता है। वायरल ऑन व्हाट्सएप जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक वायरल अपडेट्स और वायरल ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि जानी ये बात तो सबने है मानी कि वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। जी हाँ, इंटरनेट पर फेमस रहे दास अंकल और सबने देखे इनकी रिटायरमेंट की आखिरी रिंग बेल। अब दास अंकल स्कूल में रिंग बेल का काम करते थे और जो पीरियड्स वगैरह चेंज होते हैं उसके बाद जो घंटी बजाते हैं कौन सा पीरियड है बच्चों को पता चल जाता है और किस क्लास की तरफ भागना है, कौन से टीचर आने वाले हैं नहीं आने वाले, सब यही रिंग बेल डिसाइड करती है। और दास अंकल इसलिए वायरल रहे क्योंकि इनकी रिटायरमेंट का आखिरी बार का वीडियो वायरल रहा। आखिरी बार 38 साल की डेडिकेटेड सर्विस और एक आखिरी रिंग बेल इन्होंने बजाई और बच्चों ने भी जमकर तालियां बजाई और दास अंकल का किया दिल से शुक्रिया। जी हाँ, ऐसे मोमेंट्स देखकर सच में इंसान को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं और याद आ जाते हैं वो लम्हे, वो दीवारें, वो क्लासरूम जहाँ पर आप कभी सोचते थे कि मैं पलट कर नहीं देखूंगा, लेकिन आज तरस जाते हैं हम कि काश फिर से छोटा होता, फिर से स्कूल जाता। आज के बच्चे क्या समझेंगे कि ये स्कूल लाइफ क्या है, बड़े होने तो पता चल जाएगा। जी हाँ, न जाने कितने ऐसे अंकल आंटी जो स्कूल में काम करते थे और वही आपका ख्याल रखते थे, डे केयर करते थे, साथ ही साथ ऐसा लगता था कि ना वही दे आर नॉट लेस देन एनी पेरेंट फॉर अस। और जाहिर सी बात है ऐसे फिगर्स, ऐसे इंस्पायरिंग फिगर्स कभी इंसान नहीं बोलता। रेडियो चैनल 90.4 FM सभी उन टीचर्स को सैल्यूट करता है जो दिन रात एक कर देते हैं बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में, और साथ ही साथ वो एडिंग स्टाफ जो इस तरह से बच्चों का केयर करता है जितना उनके माँ बाप भी नहीं करते। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल, मैं हूँ जागजू, सिर्फ दिल का दे रहा।

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: दोस्तों मजेदार शो व्हाट्सएप अब जय कर रहे हैं, मैं हूं आपका साथी चाक ज्यूस। रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8888-9904904 इज द नंबर। हर दिल को धड़काने, हर दिल की धड़कन को धड़काने के लिए किबला, जी हाँ, अपना हाथ उठाए और नंबर डायल करें या व्हाट्सएप करें या टेक्स्ट मैसेज करें 8899-9904904 नंबर। आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, रिसर्च करें जॉक ज्यूस या ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। डीएम करके भी शो में आप शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इब्तिसाम जुड़े हमारे साथ। इब्तिसाम लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। और आगे इब्तिसाम लिखते हैं, सर मजा आ रहा है, आज गानों की कलेक्शन बहुत ही उम्दा है, एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, फीडबैक के लिए। रानी हमारे साथ जुड़ी है। रानी लिखते हैं, सर इस फर्स्ट टाइम मैं टेक्स्ट कर रही हूँ और कहना चाहती हूँ कि रेडियो चुनार बेस्ट है सभी रेडियो स्टेशंस में से। थैंक यू सो मच रानी, एंड गॉड ब्लेस यू। शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में याद रखिए, आपने भी जरूर रज रज के हिस्सा लेना है और अपनी जिंदगी का किस्सा हमारे साथ शेयर करना है ताकि वो पहुंचे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ये है व्हाट्सएप शो, और व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। ऐसे ऐसे दिग्गज नाम जो कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, आज जो उनकी डेडिकेशन की बात होगी, सेक्रीफाइस की बात होगी, नेटवर्थ की बात होगी, माइंडसेट की, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक के रिलेटेड आप भी बता सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हॉट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, मैं हूँ जॉक सिक्स।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

बस मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मेरी सुबह जब होती है ना तो लगता है कि बस अभी मेरी शुरुआत हो चुकी है और अलविदा तो मैं कहने नहीं आई हूँ। और मेरी सुबह ही इतनी खूबसूरत होती है कि मुझे पता होता है कि आपसे बात करनी है। एंड आई थिंक नथिंग मोर कैन एक्साइट मी इन माई लाइफ रादर देन टॉकिंग टू यू।

talking to this microphone. I mean, like, I am blessed. शोचन और बीट्स की शुरुआत हो चुकी है. बीट्स ऑन रिपीट, ये सारी बातें और एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं. आप सुनना ना भूले. शुरुआत हुई है अभी पिक्चर.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा अब।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: Jeremy. Jar Beats with Harsha Diva, only on Radio Chana 90.4 FM.
1: सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. मैं हूं दीबा. शुरुआत हो चुकी है शो चुनाव और बीट्स की, और ढेर सारी बातें, मस्ती मजाक बन तो है ही, और उसके अलावा एक बेहतरीन सी थॉट जिससे आपने अपने दिन की शुरुआत की. एंड व्हाई आर यू सुपर एक्साइटेड? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं ना, और स्पेशली फॉर मी इट्स लाइक मेरी पूरी वाइब और ट्राइब जब साथ होती है ना, इट्स लाइक कि पूरा एक माहौल सा बन जाता है. इट्स लाइक पूरी लाइफ जो है ना, मुझे लगता है कि मिल जा

होती है एक उस मोमेंट में, बिकॉज आई फील कम्प्लीट विद यू एंड अगर आप नहीं होते तो इनकम्प्लीट लगता है। सो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाए, 8899049044 कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और बताइए क्या है आपके हालात, जज्बात और ख्यालात, और क्या है बेहतरीन सी थॉट जिससे आपने अपने दिन की शुरुआत की। मैं हूं दीवा, आप सुन रहे शो चुनाव बीट्स, ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है दिल की।

Jeremy. Jar Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: बीट्स और रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM। मैं हूं दीवा, ढेर सारी बातें, मस्ती, मजाक, फन और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। But I'm the super excited like always and देखिए यही तो टाइम होता है कि जब आपको लगता है कि कोई मुझे नहीं सुन रहा है, मैं हूँ ना, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। एंड आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड, मानी जोश में भैया जी, वेले हो वेले क्यों भाई, मैं हूँ ना, वेलावंती भी यही पे होती है, सब कुछ यही होता है। अब बीट्स ऑन रिपीट है, वाइब है, ट्राइब है, और क्या चाहिए बेड़ो। तो बस यही है कि अपने दिल को थामना है और नेक्स्ट 2 आवर्स ये तो भाई ये एक मज़ेदार सा टाइम होता है जिसमें मैं अकेले नहीं, आप भी बात करते और बताते हैं मुझे आखिर कैसे हैं आपके हालात, जज्बात और ख्यालात। और यही नहीं कि अपने सुबह की बेहतरीन सी थॉट जिससे आपने दिन की शुरुआत की और क्या लगा आपको सुबह हिलते दुरोता, क्या बहुत क्या कम चीज़ इर्द गिर्द जो भी था आपको लगा कि सच में ना मुझे लोगों को बताना है कि आप गलत कर रहे हो, कुछ चीज़ ऐसी है आप अप्रिशिएट कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है लोगों तक। देखिए ये प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। तो जल्दी कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए क्योंकि गाड़ी निकल पड़ी और सवारी तो हमारी आप ही है।
1: हो जाओ तैयार, ये गाना है ऑन रिपीट, देखो बजती है बीट।
0: बिल्कुल रिपीट तो है और ऑन बीट भी है बिकॉज इट्स शो चुनार बीट जहां पर मिलते हैं आपको बैक टू बैक सॉन्ग। देखिए गलियों का क्या है हाल, गलियों में क्या है, क्या चीज़ है, यानी किम नाउ सर चत्तांस गली मशहूर, बताया हमें शो।

क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन तो वीडियो हक से दरगाह।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जी हाँ, इस कर्म का कैसे करूँ शुक्रिया अदा, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी ने किया। देखिए हमारे रिश्ते भी ऐसे ही कर्म हैं, हमारे जो रिश्ते हैं मुझे लगता है उससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकती है। बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फैमिलीज़ डे एंड व्हाई फैमिलीज़ आर इम्पॉर्टेंट, हम सबको ही पता है कि हमारी फैमिलीज़ की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। एंड हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, इन्हें ओवरऑल एक ऐसा बॉन्ड होता है ना हमारी फैमिली के साथ हमारा, मुझे नहीं लगता वो किसी और के साथ हो सकता है। एंड दे आर द पीपल जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, यानी कि हमारे दुख में, हमारे सुख में, और हमारा जो खून का रिश्ता इनके साथ, वो हमेशा हमें ये जज्बात बढ़ा देता है कि इन जज्बातों का हम कह सकते हैं कि वो महसूस हम करते हैं कि नहीं, हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी दौलत है। तो मुझे भी लगता है कि फैमिलीज़ जो है इससे बड़ा कर्म और कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और जिसके पास जिनकी फैमिली है वो उनकी कदर जानते हैं, और जिनसे

उनकी फैमिली दूर हो गई है, छूट गए, या वो कहीं दूर रहते हैं, उनसे उनसे पूछिए उनकी कदर कि वो कितना मिस करते हैं अपनी फैमिली को. अब आप कितना मिस करते हैं अपनी फैमिली को, और आप के हिसाब से आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं, मुझे बताइए. शो का हिस्सा बन जाइए. 8899904904 पर आप डिवोशनल म्यूज़िक सुन रहे हैं नादिया कलाम सूफिया का कलाम. और अभी हम बात करें तो आज जुमतुल मुबारक है, इस खास मौके पर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के बारे में. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, थीम के बारे में भी डिस्कशन होगा. 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए. शूट एन आर बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

शो चुनार बीट्स, आप सुन रहे थे मेरे साथ रेडियो चुनार 90.4 FM, एंड हमने आज बात की इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के बारे में, ढेर सारी बातें हुई, एंड अभी वक्त आ गया है कि आपसे इजाज़त लिया जाए, और आपसे मैं जुड़ूंगी बराबर कल 12 बजे। तब तक आपने अपने ख्याल भी रखना है, और शो हंगामा लेकर असरा भी आ रही है, तो आप उनके साथ बाकी बातें करेंगे। आज जुमतुल मुबारक था, नादिया कलाम सूफ़ी कलाम हम आप तक पहुँचाया, आपको मौका दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत में, दुआओं में याद रखें, ताकि हमारा साथ यूँ ही बना रहे। फिलहाल मेरा साथ ख़त्म हो चुका है, कल आऊँगी 12 बजे। ख्याल रखिए अपना, सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है दर्गन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल्प।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल का मामला तो है, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी आ जाती हूँ। शो शुरू हो चुका है, हंगामा जहाँ होता है, एंटरटेनमेंट, ड्रामा और जो भी बजिंग है उसके साथ साथ लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। मस्त तो है और ड्रामेटिक भी, क्योंकि जब शो शुरू होता है हंगामा तो बहुत सारी बातें होती हैं और ऐसे ही आज भी बहुत सी बातें होंगी बराबर चार तक। और रेडियो सुनार पे चार बजे तक शो हंगामा होता है और शो हंगामा शुरू होते ही कुछ ना कुछ क्रेजी प्ले होता है। क्यों इंटेंशनली आऊंगी और आ भी गई हूँ और आ भी आ जाएंगे। 8899904904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप, ताकि आप हमारी गली आ पाए। एंड मोर ओवर बात करें कि आज फ्राइडे है और एवरीबडी नोज हु लिसंस टू मी एवरी डे कि फ्राइडे के दिन एक अलग ही खुशी होती है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि वीकेंड नज़दीक होता है और उन लोगों के लिए ज़्यादा खुशी होती है जिनको सैटरडे भी छुट्टी होती है। भाई, हाउ डज इट फील टू बी गॉड्स फेवरेट? हाँ, शो शुरू हो चुका है और आप भी बन जाइए शो का हिस्सा। आपको मालूम है क्या करना है, 8899904904 इज नंबर, आई रिपीट, बन जाइए शो का हिस्सा। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। सुन रही है रेडियो सुनार, हर दिल की धड़क।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: से असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी वक्त है रेलवे अपडेट का, यानी कि जो कश्मीर रेलवे लिंक है बारामूला बड़गाम बानीहाल संगलधन कटरा और अब जम्मू भी, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की जिस दिन वो शुरू हुई और क्या है क्या नहीं है क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में भी बात हुई। पर आज की अपडेट यही है कि जो भी इफ़ यू हैव टू बुक अ टिकट फॉर वंदे भारत स्पेशली, तो आपको वो लिटरली एक महीने पहले या दो तीन हफ्ते पहले ज़रूरी बुक करनी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। देखिए, एक नई चीज़ है और कहीं ना कहीं प्राइजेस भी उतने ज़्यादा सरप्लस नहीं है, तो एवरीबडी इज प्रेफरिंग कि हम वंदे भारत का फायदा उठाएं। तो जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी वंदे भारत से ट्रेवल करें, तो अपना जो प्लान शेड्यूल्ड है, जो टिकट्स बुक करनी है, तो यू हैव टू डू इट प्रायर वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम पहले, और ताकि आपके शेड्यूल में कोई डिले या कुछ जो अनहोनी ना हो। उसके अलावा अगर बात करें डेली जो लिंक्स जाती हैं, जो लोकल लिंक्स जाती हैं, उसके बारे में यही अपडेट है कि हर कोई ट्रेन विल बी शेड्यूल्ड बाय समर टाइम टेबल एंड यू कैन गेट द समर टाइम टेबल एंड द टाइमिंग्स फ्रॉम द ऑफिशियल रेलवे ऐप, दैट इज The Rail One। रेल वन ऐप से पहले UTS ऐप यूज़ करते थे लोग, एंड दैट वाज द ऑफिशियल। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं मैसेज करके कि व्हाई डू यू से रेल वन, हम तो UTS यूज़ कर रहे हैं। बट UTS इज़ द आउटडेटेड वर्जन, एंड अभी का नया वर्जन इंडियन गवर्नमेंट ऐप इज़ रेल वन। और उसमें फन फैक्ट इज़ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कश्मीर रेलवे के बारे में नहीं, बल्कि पूरे इंडियन रेलवे के बारे में पता चलेगा, जो ट्रेन बिटवीन स्टेशन से लेकर ट्रेन टाइमिंग्स तक, लोकेशन, लाइव स्टेटस तक। बिल्कुल, हमें भी प्यार ही चाहिए आपका। 8899-0494 इस नंबर, जल्दी से विचार शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस या कोई भी ऐसी चीज़ अपडेट के बारे में, या कोई भी अपना एक्सपीरियंस जो ट्रेन से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हैं। 8899-0494 इस नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट।

0: साथ। अब देखिए एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो ये ट्रैक आप सबके लिए।
1: चमक छल्लो छिल छबीली कहते हैं मुझको।
0: देखिए मुझे तो आरजे असरा कहते हैं और आपको हम सबकी ऑडियंस वो भी प्यारी सी। और जल्दी से जुड़ जाइए, मैं हूँ अस्रा, मैं बस क्यों कही और यूं वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Hi, मैं हूँ असरा and you're listening to the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा शो है जहाँ ड्रामा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी होती है, और अभी की इन्फॉर्मेशन ये है कि कैसे हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, और हमेशा वी ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम पीपल, टॉक अबाउट द पीपल, एक्चुअली टॉक अबाउट पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम लोगों के बारे में बात करें, कि लोग जो सोसाइटी बनाते हैं उसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम सोसाइटी के बारे में बात नहीं करेंगे, वी वॉन्ट क्वेश्चन इट और वी वॉन्ट टॉक अबाउट कि क्या चल रहा है आस, तब तक चीजें बेहतर या अप्रिशिएट कैसे होंगे। और आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। क्या आपने कभी सुना है कि या आपने आसपास देखा हो, घर पे, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी, एट अ पब्लिक प्लेस, या स्पेशली हमने अपने घर पे देखा है कि हमारी मम्मियाँ हर चीज़ पे एडजस्ट करती हैं, हमारी मदर्स हर चीज़ पे सैक्रिफाइस करती हैं। और अगर एक चीज़ होती है ना कि भाई बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सैक्रिफाइशल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक माँ से ही होती है, चाहे हम करियर वर्सेस फैमिली की बात करें या वो मेंटल फिजिकल लेबर जो होता है एक हिसाब से, वो मदर्स पे, सिस्टर्स पे। अब मदर्स की बात हो गई, सिस्टर्स की कैसे बात करें, सिस्टर्स की अगर दोनों भाई बहन, फॉर एग्जाम्पल भाई बहन हैं, दे कम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रिप और समथिंग, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जैसी बोए थोक में दिमिज देते त्रेश गिलास, तो लाइक दीज थिंग्स हैपन एक्चुअली इन द सोसाइटी एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। कहीं ना कहीं ये इसलिए नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है तो कोई किसी को टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिकली समबडी इज टारगेटिंग वुमेन, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो गई हैं या पहले से की जाए, मतलब कर रहे हैं लोग, जिस पे हमें एक्चुअली लाइक वी हैव टू रिफ्लेक्ट इनटू इट, वी हैव टू चेंज सम ऑफ द थिंग्स, ताकि हमारी जो सोसाइटी है एक बहुत ही खूबसूरत और लिवेबल रहे एक्चुअली फॉर एवरीबडी, इक्वल राइट्स हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, और किसी से एक्सपेक्ट ना किया जाए कि तुम अपनी खुशियां सैक्रिफाइस करो ताकि बाकी खुश रहे। देखिए, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट एक बैलेंस्ड वे में रेडियो चुनार सामने लाता है, एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। और आप भी बताइए कि आपको ये चीज़ कैसी लगती है। और आज जैसे कि हम सैक्रिफाइस एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन एंड सैक्रिफाइस, एंड कहीं ना कहीं जब औरत का नाम लिया जाता है तो सैक्रिफिशियल को, एक सैक्रिफाइस को, एक्सपेक्टेशंस को इतना पेडिस्टल पे चढ़ाया गया है कि जब तक कोई औरत, जब तक एक लड़की सैक्रिफाइस करे, तब तक वो एक अच्छी सिटीजन नहीं है, तब तक वो एक अच्छी मदर नहीं है, अच्छी सिस्टर नहीं है, अच्छी वाइफ नहीं है। तो आज इसी बारे में बात होगी, और आप भी शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आप कुछ कहना चाहते हैं। 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं वास्तव में शो है हंगामा, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lola T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हम वेमेन एंड सैक्रिफाइस एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, हमने बात की कि कैसे सबसे पहले जब सैक्रिफाइस का नाम आता है तो अश्चगढ़ियवा जनाना थी, यानी कि जो भी औरतें हमारे घर पे होती हैं, मदर्स, सिस्टर्स या हमारी जो वाइफ है, उन वो याद आती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इससे एक्चुअली क्या असर पड़ता है मेंटालिटी पे, वो ये है कि हमें जो औरतें हैं उन्हें हमेशा लगता है कि हम पे एक बहुत बड़ी एग्जॉस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनकी नहीं, पूरी की पूरी फैमिली की होती है। बट फिर भी वो चीज़ इस टाइम पे कोई नहीं समझता। और एक चीज़ है कि कैसे सेल्फलेस मदर एंड वाइव्स, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड दिस एंड उनके दिमाग में ये नोशन रह जाता है, और कहीं ना कहीं होता भी है कि कैसे हमारी जो मदर्स हैं, हमारी जो पार्टनर्स जो हैं हमारे, तो उनको हमेशा सेल्फलेस रहने की ज़रूरत है, यानी कि वो अपने लिए कभी ना सोचे। दैट इज़ द साइन ऑफ अ गुड मदर, दैट इज़ द साइन ऑफ अ गुड वाइफ। बिल्कुल नहीं, दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ इट। एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक अपने कुछ इच्छाएं, अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी लाइफ से, और वो चीज़ें पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि एक फैमिली को दोनों ही पार्टनर्स बनाते हैं। योर मदर, योर फादर, बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट एक किसी भी फैमिली के लिए, बट जरूरी

क्या इस बारे में बात हो कि कैसे हर बार ये ग्लोरीफाई किया जाता है कि जब एक मदर अपने आप को भी कुर्बान कर देगी बच्चों पर, बट ये बात तो सही है, दैट इज आउट ऑफ लव. बहुत लोग ऐसा सच में भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारी मदर्स हैं, जो हमारे सिस्टर्स, कोई भी फीमेल अराउंड अस, उन्हें हमेशा एक्सपेक्ट ना करें उनसे कि वो हमेशा ही

बिल्कुल खुल के जीने का. और स्पेशली इफ एनी मदर सिस्टर एनीबडी इज़ लिसनिंग टू मी, ये ज़रूरी है कि वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशें ना दबाएं. ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से या किसी से भी जो आपके आसपास रहते हैं उनसे नहीं बोलेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे. तो ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करें, उन्हें बताएं कि आप क्या चाहती हैं, और हमेशा आपको सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं. अब बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है. 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

अजी हमारा काम ही भवरे जैसा है, क्या करें, आके पीछे ढोलना पड़ता है बस, और आपको बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है, और उसके अलावा ये भी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन एंड सैक्रिफाइस एक्सपेक्टेशंस के बारे में। एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, देखिए दीवाने और रिमाइंडर को एक ही हो गया, बट दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बिल्कुल खामोश नहीं रहने का।

और बोल देने का जो दिल में, और अपने विचार शेयर कीजिए, विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम है रेडियो चिनार, वो भी सही मेरे यार वाला रेडियो चिनार। मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो चिनार।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Sorry, me. Chinar Beats with Harshi Deva. Only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, बुरा हाल तो है क्योंकि कुछ ही देर बची है अब हमारे शो में, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जैसे बहुत सारे लोग जुड़े, तो ज़रूरी है कि आप भी जुड़ें, अपनी कहानी बोलें। और जैसा कि आज हम वेमेन एंड सैक्रिफाइस के बारे में बात कर रहे थे, कैसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक लड़की ही सैक्रिफाइस करे, तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है या आपने कभी अपने आस पास ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो जल्दी से शेयर कीजिए। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे थे शो हंगामा, जो कि अभी अभी खत्म होने जा रहा है। पर ये वादा जरूर है कि कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन, क्योंकि कल सैटरडे है। बस मैं हूँ असरा, शो था हंगामा, और आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते बस यही बोलूंगी कि अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए। एंड दिस वॉज

0: Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: Hi, मैं हूँ RJ साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

शो रेडियो चुना 90.4 FM गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो चुना 90.4 FM 4 FM

सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats ve Darche Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें

0: महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

शांति तुमने तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली, और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना। मैं खुश हूं, मैं खुश क्योंकि क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेहरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खाते हा? सारी रात नहीं, किसी जन्म में उनका मुझसे फिर पाला पड़ गया ना। तो आ मुनियादार मुनियादार या नाराज कला महीने बहुत तो नहीं हो रही है।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: सुहानी शाम।
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सूरज, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ उमुए उमुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, हाँ हाँ हाँ खोई वो कैसे मेरी बातों में।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दास, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: से जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।